कहता कि यार खुश रहिए एंड ज्यादा सोचिए मत, स्ट्रेस एंजाइटी ओवरथिंकिंग, ये तीन चीजें ऐसी है कि आपको कुछ फ्री मिले या ना मिले, लेकिन ओवरथिंकिंग के बाद में अगर आप ओवरथिंकिंग करते हो तो ओवरथिंकिंग के ऊपर स्ट्रेस एंड एंजाइटी बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगी। तो आप चाहते कि ये मुफ्त वाली चीजें लेनी चाहिए? यही मैं कहता हूँ हमेशा कि स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग ये दोनों चीज़ें बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। आपको आपके मेंटल हेल्थ का भी सोचना चाहिए। स्क्रीन टाइम इस कदर बढ़ चुका है, ऑप्शन कुछ है नहीं, क्योंकि सारे काम स्क्रीन पर ही होते हैं। विदाउट स्क्रीन तो कुछ होता नहीं है, और जब स्क्रीन का काम नहीं होता है तो हम लोग इंस्टाग्राम या फिर कुछ ना कुछ रोल करते रहते हैं। दैट्स व्हाई ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस होता है। सो हमने एक अभियान भी शुरू किया था कि नो स्क्रीन फॉर 2 आवर्स, आपको याद है?

know, some months before I started the अभियान called No Screen for 2 hours, मतलब 2 घंटे तक कोई भी स्क्रीन नहीं देखेगा. अभियान के द्वारे बहुत अच्छे हमें रिव्यू आए थे, बहुत अच्छे हमारे लिसनर्स मैसेज भी कर रहे थे, हमसे जुड़े थे. आज भी कुछ लिसनर्स जुड़े हैं कि उनका ये अभियान अभी तक शुरू है, मेरा भी शुरू है, लेकिन 2 hours टू बी ऑनेस्ट वर्कलोड थोड़ा बढ़ चुका है, तो 2 hours नो स्क्रीन मैं नहीं कर पाता हूँ. बट 1 hour का गैप देके फिर से 1 hour स्क्रीन नहीं देखना, ये तो मेरा चल रहा है. मतलब जैसे कैसे मैनेज होता है मैं कर रहा हूँ, और आपने भी करना चाहिए. क्योंकि क्या है कि आदत सी, काम है तो करना ही चाहिए, लेकिन बिना काम का स्क्रीन स्क्रॉल करना कोई फायदे वाली डील नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. सो डू टेक केयर ऑफ इट, और अगर हो सके तो ये अभियान हम दोबारा शुरू करते हैं. आप बने रहिएगा ना रेडियो नायरा पर, पक्का देसी तो है साथ में, पक्का लोकल भी है.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारापण निर्माता नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है कि बॉलीवुड की खबरें मैं आप तक पहुंचाओ। तो पहली खबर है भाईजान को लेकर। पहली खबर भाईजान यानी सलमान खान को लेकर है। भाई ने अपने फैंस को एक तगड़ा सरप्राइज दिया है और खुद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। अरे वाह, क्या बात है यार। सलमान ने बोला है कि अब फैंस को उनके पर्सनल लाइफ से लेकर फिल्मों के पीछे की हर एक इनसाइड खबर, मतलब ए टू जेड सब कुछ उनके यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अरे अरे, ये कितनी अच्छी बात है। वैसे भाईजान अभी टीवी पर बिग बॉस 20 भी कर रहे हैं और जल्द ही फिल्म मातृभूमि में ढांसू एक्शन करते दिखेंगे। सलमान खान ने ही तो सिखाया है यार बॉडी कैसे बनाते हैं, है ना। तो इट्स लाइक ये तो मज़ेदार चीज़ रहने वाली है। भाईजान अगर यूट्यूब चैनल पर बॉडी बनाने की कुछ टिप्स भी दे दे तो मज़ा आ जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो।

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
2: Tanishq, her Tata product. Grocery ka bill dekhke shock lagta hai. Gas aur diesel prices se dimag garam ho raha hai. Health insurance kitna mehenga ho gaya hai. Aur Medicare, Medicaid, social security ko kaatne ka plan hai. Hum aam log struggle kar rahe hain, jabki ameer aur bhi ameer hote ja rahe hain. इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट. आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट. इस नवंबर जरूर वोट करें.
3: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.

आपने एंजॉय किया ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। और अगली खबर है एक बड़े बवाल को लेकर। देश में चल रहे सीजेपी प्रदर्शनों के बीच बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जैसे अनुराग कश्यप और प्रकाश राज खुलकर मैदान में आ गए हैं। इस मुद्दे पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी पर गुस्सा निकालते हुए सिंगर विशाल ददलानी ने तो सोशल मीडिया पर बेहद कड़े शब्दों में जो बातें की है वो आप देख लेना। बहुत बातें की है विशाल ददलानी ने और कहा है कि छात्रों पर लाठी चार्ज के बाद भी चुप रहने वालों को शर्म आनी चाहिए। एंड थिंग इज दैट कि चीज़ें जो है इट्स लाइक वही है कि मौसम जो है वो याद रखिएगा बिगड़ने वाला है, इसलिए अपनी टेक केयर करना बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। मैं जा रहा हूँ आपको अगला गाना बजेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय किया आपने ये गाना जो कि था वाकई में काफ़ी ब्यूटीफुल। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड दूसरी खबर है बॉलीवुड की चुलबुली आलिया भट्ट के बारे में। खबर पक्की हो गई है कि आलिया अब तुम्बा 2 फिल्म में नजर आने वाली है। क्या बात है। फिल्म के प्रोड्यूसर सोहम शाह ने राज खोलते हुए बताया कि आलिया को फिल्म की कहानी इतनी जबर लगी है कि उन्होंने सिर्फ 2 मुलाकातों में ही फिल्म के लिए हाँ कर दिया है। इस बार आलिया का रोल बहुत हटके होने वाला है। आलिया एक ऐसी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है जो लाइक रोल में ढल जाती है। डिफरेंट चैलेंजेस लेना उन्हें पसंद है, उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना उन्हें पसंद है। एंड आलिया इट्स लाइक यार आलिया तो आलिया है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, बने रहिएगा।

0: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
1: कब?
0: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
1: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
0: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

तो वाइब सेट करने का अवार्ड दिया जाता है इस गाने को. क्या ही वाइब सेट कर रखी है इस गाने ने. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स और मैं हूं सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आरजे पराग. 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश. और नॉर्थ कैरोलिना के जंगलों से एक मुस्कुराने वाली खबर आई है. यहाँ एक नन्हा भालू का बच्चा कई दिनों से परेशान था क्योंकि उसका सिर एक बड़े जग में फंस गया था. आज रेस्क्यू टीम ने बड़ी सूझबूझ से उसे प्लास्टिक के जग को काटा और भालू के बच्चे को सुरक्षित आजाद कर दिया है. मतलब मौसम खराब है इसलिए सावधानी बरते और रेडियो सुनते रहे. वही यार, मतलब एनिमल बेचारे कुछ बोल नहीं पाते हैं और इस तरह से एनिमल को भी हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड देना चाहिए. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल.

को देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं, वारे फिल्म ये इतनी अच्छी फिल्म है दृश्यम 3, मुझे भी देखना है यार, लेकिन क्या बताऊँ मैं वक्त कैसे निकालूँ मूवी को देखने के लिए, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं टाइम का मैनेजमेंट करके थोड़ा सा फिल्म देखने की कोशिश करूंगा। एंड डेफिनेटली मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है यार विजय सालगांवकर का, ये रियली कंक्लूजन है या अगला पार्ट आने वाला है मुझे कुछ भी नहीं पता है, और ऑडियंस इतनी अच्छी कि कोई कुछ भी रिवील नहीं कर रहा है दृश्यम 3 के बारे में, है ना। सो इट्स लाइक देखते हैं अब कब मौका मिलता है। तो यही है यार, अजय देवगन की तो ये बहुत मज़ेदार फिल्म है, गोलमाल भी अगली आने वाली है, एंड इट्स लाइक बहुत कुछ लाइक मज़ा आने वाला है ना। तो आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

गाना था वाकई में बेहतरीन। एंड कियारा आडवाणी के घर आने वाले नन्ही खुशियों के बारे में अगली खबर है। सोशल मीडिया पर कियारा की एक फोटो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें छोटे बच्चे के मोजे हाथ में उनके नजर आ रहे हैं। इस खबर के बाद फैंस और बॉलीवुड उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। करीना, आलिया और दीपिका की तरह अब कियारा भी अपनी पर्सनल लाइफ और करियर के साथ एक बाखूबी बखूबी से आगे बढ़ रही है। तो भाई ये जो है बॉलीवुड के अड्डे के बारे में इतना मसाला है आज मैंने आपको बता दिया है। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंड फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, बने रहिएगा यारो।

जी हाँ, एंजॉय किया आपने गाना। गाना तो वाकई में काफी ब्यूटीफुल। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, एंड यही थी बॉलीवुड की कुछ खबरें। मजा आ रहा है यार, मतलब जिस तरह का लोग तो कंपेयर कर रहे हैं कि दृश्यम 3 जो है हिंदी वर्जन वो काफी बेटर है, एंड डिबेट तो लोगों की चलती रहती है सोशल मीडिया पर। एक्चुअल में ये फ्रेंचाइज बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वाकई में ये कंक्लूजन है देखना पड़ेगा। और आप हमारे रेडियो नायरा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, उसके बाद आपको मिलेगा ऐप। ऐप इंस्टॉल करने के बाद यू कैन लिसन हमारे आरजेस के बहुत अच्छे अच्छे शोज, एंड यू कैन लिसन अनलिमिटेड म्यूजिक। शर्त बस इतनी है कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्मला नाइट, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना, बने रहिएगा।

वाला नाइट्स एंड दृश्यम 3 इस कदर छाई हुई है कि दृश्यम 3 के बारे में अजय देवगन की वन ऑफ द ज़्यादा अच्छी कमाई करने वाली और सक्सेसफुल फ्रेंचाइज मानी जा रही है। जनरली ऐसा होता है कि फिल्म का पहला पार्ट बहुत अच्छा बनता है, फिर दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट इट्स लाइक लोग यही कहते हैं कि यार पहला पार्ट वॉज लाइक गुड, हाँ दूसरा पार्ट भी अच्छा था लेकिन पहला पार्ट अच्छा था, देन तीसरा पार्ट आता है तो उसके बाद लोग कहते हैं यार यार जो मज़ा पहले एंड दूसरे पार्ट में था वो तीसरे में नहीं था। तो जैसे जैसे पार्ट आते हैं, सीक्वल आते हैं, तो लोगों की रिएक्शन मूवी के प्रति चेंज होते रहती है। बट दृश्यम इज द ओनली थिंग जिसका पहला पार्ट तो लाजवाब है, रहेगा, दूसरा पार्ट उससे भी लाजवाब था एंड तीसरा पार्ट तो लोग कह रहे हैं कि सबसे लाजवाब है। तो इट्स लाइक यार और क्या चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बना नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल।

एंजॉय किया आपने एक गाना गाना, वाकई में इतना ब्यूटीफुल था कि जिसने वाइब सेट कर रखी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पनीर वाला नाइट्स एंड मैं यही कह रहा था यू नो कि यार नींद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी तरह से अच्छे से होती है तो ही काम में मन लगता है, वरना दिन भर नींद आना एंड काम में मन ना लगना, आलसी आलसी लगना, इट्स वेरी यूजुअल। नींद का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो होगी कैसे? तो आपको विचारों को थोड़ा साइड में करना है, मोबाइल को इफ इट पॉसिबल बाहर रख देना है, बेडरूम के घर के नहीं बेडरूम के बाहर रख देना है, एंड थोड़ा मेडिटेशन करके आपको सोने की कोशिश करनी है। तो ये वो टाइम है जब लोग घर जाते हैं एंड अपने लव वन से मिलते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत टाइम है। रफ्तार पर गाड़ी के कंट्रोल कीजिएगा, संभल के जाइएगा, एंड कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इस शो पर। 7 से 10 हमारा शो चलता है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।

सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां

कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है,

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com.
1: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी।

0: थे। बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

a roly poly joy is actually such an amazing thing. Main batati hu kyun. Radio Nara pe aap awaaz sun rahe Amrita ki, and right now I'm talking about those people jo actually gir ke uthna jante hain. Un sabhi logon ke liye main ye baatein keh rahi hu ki aap jaisa actually energetic person और डिटरमाइंड पर्सन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. वैसे इस वक्त तो मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आपके दिल से जरूर बात कर रही हूँ. अगर आपको किसी ने ये नहीं कहा है ना दैट यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन, तो ये बात मैं आपको कहती हूँ. दैट जस्ट लाइक अ टम्बलर डॉल एंड रोली पॉली जॉय, यू आर जस्ट अमेजिंग पर्सन जिसे गिरना भी आता है और गिर के उठना भी. और लाइफ तो इसी का नाम है, जो गिर के उठना जाने. तो चलिए इसी बात पे सुनते हैं आने वाला गाना, एंड आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड.

Welcome back to Radio Naira, and this is your host Amrita. To all those people who actually loves to rap, loves hip hop, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जैसे Legacy, which was an OTT reality show, वैसे ही जो शो शुरू हुआ था Hustle, जिसका season 5 आ रहा है, and actually आ चुका है उसके finalist भी तैयार हो चुके हैं अपने अपने finals में बेहतर performance देने के लिए, वो सब चीजें ना decide हो चुकी हैं. And anyhow, अगर आपने ये चीजें miss कर दी है, तो मैं हूँ न जाने मन. मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन है फाइनल लिस्ट में, किसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है. जी हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स फाइनलिस्ट ऑफ हसल 5. तो पहले नंबर पे धड़कन है, हु सिक्योर्ड द फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉट बाय विनिंग द टिकट टू फिनाले. एंड देन व्हाई सो काय, ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली गाय जिसके लिए सबके अंदर ये प्रेडिक्शन थी कि ये तो जाएगा ही जाएगा, हरमीत डी फ्लेको, अंश फॉर श्योर एंड राज बाबू. ये सभी वो फाइनलिस्ट हैं जो बिल्कुल तैयार हैं फिनाले के लिए और आप लोगों के दिल पे राज करने के लिए. तो चलिए अब सुनते हैं ये आने वाला गाना, विच इज माई फेवरेट ऑफ कोर्स, और मैं चाहती हूँ आप इस गाने को जरूर सुने एंड इस बंदी को भी बहुत सारा प्यार दे. मेगा सिरोई, आई जस्ट लव यू, आपका ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम गोइंग टू प्ले इट. Yeah.

वेलकम बैक टू रेडियो नायरा एंड दिस इज योर होस्ट अमृता. लेट्स टॉक अबाउट दृश्यम 3 जिसने एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे राज करना शुरू कर दिया है. जी हाँ, एक्चुअली इट इज डोमिनेटिंग द बॉक्स ऑफिस ओवरऑल. अजय देवगन की ये फिल्म ने कमाल ही कर दिया है. 400 करोड़ की कमाई अभी तक हो चुकी है ग्लोबली इन जस्ट 1 वीक और अभी भी काउंटिंग में चल रहा है. आपने देखी ये नहीं देखी ये मूवी मुझे जरूर बताना सो दैट आई कैन ऑल्सो मेक माई मूड कि मैं इस मूवी को देखने जाऊँ या फिर नहीं. यू कैन टेल मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज आर JAMRITAA. टिल दैट चलिए सुनते आने वाला गाना. मिलती हूँ आपको ऑन द अदर साइड.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Okay, this is your host Amrita and you're listening to Radio Naira. अब मैं आपको एक कोट सुनाती हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है. You know about SpaceX के किंग जो इंडिया में बेच नहीं पा रहे अपना स्टारलिंक. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इलॉन मस्क की, जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था द प्राइम मिनिस्टर अंबानी. अंबानी को ट्रोल करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया था और उन्होंने बेग किया है एक्चुअली इंडियन पीपल से कि आप लोग प्लीज स्टारलिंक खरीद लो. एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि ठीक है यार इलॉन मस्क, ओके आई गॉट यू, यू आर द किंग ऑफ एवरीथिंग, ऑफ कोर्स द ट्रिलियनियर, और वो तब भी बेच नहीं पा रहे इंडिया में अपना सामान. बहुत दुख की बात है. बट मुझे इससे एक चीज समझ में आई है कि हर किसी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान देने का बिल्कुल हक है और वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे भी. भले ही ये स्टारलिंक बहुत सारी कंट्रीज में एक्चुअली अवेलेबल है, इसके लाइसेंस भी सारी कंट्रीज की तरफ से सबको मिल चुके हैं, लेकिन इंडिया अभी इसके लाइसेंस को रिव्यू कर रहा है. नेशनल सिक्योरिटी के तहत वो देखेगा एंड फिर अगर उनको लगा तो वो खरीद सकते हैं इसको. वरना तो हमारे अम्बानी भैया ने बोला है कि एक्चुअली हम लोग 1600 सैटेलाइट्स लगाने का सोच रहे हैं. जी हाँ, 1600 सैटेलाइट्स जो कि फास्ट इंटरनेट स्पीड देने में बहुत काम आएगा. तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें स्टारलिंक खरीद लेना चाहिए या फिर अपने लोगों पे भरोसा करके वो 1600 सैटेलाइट का वेट करना चाहिए? डू टेल मी कि आपके ओपिनियंस क्या है ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच इज RJAMRITAA. टिल दैट चलिए सुनते हैं आने वाला

यू आर लिसनिंग टू रेडियो नारा एंड दिस इज योर होस्ट अमृता. गाने के बाद आपके बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर. एंड लेट्स टॉक अबाउट द होरोस्कोप्स विच इज रेडियो नारा होरोस्कोप्स रैपिड फायर. और पारी है एरीज की, यानी मेष राशि वालों की. आप लोगों के लिए आज का वाइब जो है ना, वो काफी ज्यादा क्लियर थिंकिंग एंड बाउंड्रीज बनाने वाला है. एंड मेष राशि वाले, इमोशंस में बहकर कोई ऐसा फैसला मत लीजिए कि आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाए. फैक्ट्स पर जरूर ध्यान देना है और घर परिवार की जिम्मेदारियों को थोड़ी सी प्रायोरिटी भी देनी है. इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी चौरस के बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक. कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना.

हाँ जी, रेडियो रहा होरोस्कोप्स रैपिड फायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड यू आर लिसनिंग टू योर होस्ट अमृता ऑफ कोर्स. और आपको बताने वाली हूँ मैं वृषभ राशि यानी चौरस के बारे में. ऑल द चौरियंस जस्ट कम इन लाइन. आज की आपकी जो वाइब है वो फुल ऑन एनर्जी और नए एक्शन के साथ होने वाली है. एंड यू नो आज आपका जोश काफी हाई रहेगा. टीम वर्क और क्विक इंटरैक्शन से आप अपने गोल्स को जल्दी पा लेंगे. सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग बिग तो आपको थोड़ा सा ग्रुप वर्क में भी काम करना पड़ेगा और टीम वर्क से आपको सपोर्ट ही मिलता है. तो आइंदा से आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी काम आप अकेले ना करें. सपोर्ट आपके दोस्तों का अगर रहेगा तो काम जल्दी भी होगा और अच्छे से भी. इसके साथ साथ अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनाइज की. सो ऑल द जेमिनाइज जस्ट कम इन लाइन. मैं मिलती हूँ आपको आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
1: At Triangles Biryani in Morrisville, we are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kuku Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in our weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangles Biryani. Fresh, flavorful.
2: The Morrisville Chamber of Commerce invites you to the Knowledgeable Network of Women, The Power of Voice, on Wednesday, October 22nd from 11:30 a.m. to 1 p.m. This inspiring interactive session will help you communicate with confidence, find your voice and show up with greater clarity and purpose. Register today at morrisvillechamber.org. Media partner, Radio Naira.
3: Every restaurant becomes an experience. But Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
4: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
5: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
4: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
5: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
4: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
5: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event,
3: Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
6: हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा होरोस्कोप रैपिड फायर में. एंड दिस इज टाइम फॉर जेमिनाइज. थोड़ा पॉज लेने और पुरानी प्लानिंग रिव्यू करने का समय आ चुका है, क्योंकि सारे मिथुन राशि वाले, चीजों को फोर्स बिल्कुल मत करिए, इसको छोड़ दीजिए. थोड़ा रिलैक्स करिए, अपने ही फाइनेंस और अकाउंट की प्लानिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये टाइम है जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं. और एग्जीक्यूट करने का जब टाइम आएगा तब भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन दिस टाइम आपको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, हर चीजें देखने की जरूरत है, उसके बाद अपने डिसीजंस लेने की जरूरत है. सो इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस टुडे, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता चल पाए और इसके साथ ही आपको डिसीजन लेना चाहिए. एंड आफ्टर दिस मैं आपको बताने वाली हूँ कैंसेरियंस के बारे में, यानी ऑल द कर्क राशि वाले. तो प्लीज आप जरूर कहीं जाइएगा मत और यहीं पर बने रहिएगा विद रेडियो नायरा, एंड आई एम गोइंग टू कैच यू ऑन द अदर साइड.

0: वेलकम बैक टू रेडियो नायरा होरोस्कोप रैपिड फायर एंड दिस इज योर होस्ट अमृता. चलिए बात करते हैं ऑल द कैंसेरियंस की, यानी कर्क राशि. सो फॉर टुडे आपके लिए बताऊं तो एक गुड न्यूज मिलने वाली है कर्क राशि वालों को. आपको मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी उसकी चीज के लिए, एंड आपकी मेहनत की काफी तारीफें भी की जाएंगी. और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई जरूर रखिएगा, सक्सेस आपके पास आ रही है. एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू नो एंड रिमेम्बर कि सक्सेस आपके पास आ रही है. सो फटाफट से टाइट अप हो जाइए एंड गो फॉर इट. और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी लियोस के बारे में, यानी सिंह राशि. जस्ट गेट इन लाइन.
1: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स.
2: भक्ति धाम राली ब्रिंग्स यू चांदनी रास 2026 विद रेडियो नायरा एज मीडिया पार्टनर एंड को स्पॉन्सर. वेयर व्हाइट, डांस अंडर द चांदनी, सेलिब्रेट टुगेदर. Enjoy Garba and Dandiya with DJ Ronak. Festive shopping with clothing, jewelry and gifts. Plus freshly prepared festive bites and complimentary traditional doodh poha. Join us Saturday, October 24th at Net Sports Morrisville. Doors open at 7 p.m. Garba starts at 8 p.m. Vendors are also welcome to showcase their products and services at special community-friendly rates. For vendor details, please contact Hemal Desai or Ripal Parikh at 919-610-4194. For tickets and event details, visit bhaktidhamrali.org and click on Chandni Ras 2026. You can also find Chandni Ras tickets on zephy.com.
3: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
4: कब?
3: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
4: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
3: ठीक है, संडे देन. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds?
5: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा पे, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं होरोस्कोप्स की बात ही, और यहाँ पर अब बारी है लियोज यानी सिंह राशि की। सो आप लोगों के लिए मैं बताऊँ, लीडरशिप और ग्रैंड डिसीजन लेने का दिन है और काफी अच्छा दिन रहेगा ये। सिंह राशि वालों के लिए लीडर बनने का समय आ चुका है। ऑफिस हो या घर, आपके डिसीजन काफी इम्पैक्ट डालेंगे। बस जिम्मेदारी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू एनीथिंग इम्पोर्टेंट टुडे, जस्ट गो फॉर इट। दिन काफी ज्यादा लकी है। एंड ऑफ कोर्स आपको इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप डिसीजन क्या लेते हैं और किसके लिए। सो इसी के साथ अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गोस की, बताऊंगी आपको लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक।

0: हाँ जी, तो स्वागत है आपका रेडियो नारा पे एंड वी आर डिस्कसिंग होरोस्कोप एंड नाउ इट्स टाइम फॉर वर्गोस। डिसिप्लिन और पुराने एक्सपीरियंस से सीखने का दिन है। कन्या राशि वालों के लिए शॉर्टकट मत ढूंढिए, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट नोट पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सक्सेस जरूर मिलेगी। वैसे मैं सच बताऊं तो वर्गोस के लिए ना ये काफी अच्छी बात है कि वो अपना काम जरूर करते हैं, पूरा दिल लगा के करते हैं, लेकिन वो ना थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढने का कोशिश करते हैं। बट इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए और सक्सेस चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा उन चीजों पे जरूर ध्यान रखिए। अब बताऊंगी आपको लीब्रास यानी तुला राशि के बारे में, तो सुनना मत भूलिएगा आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक।
1: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।
2: Your talent brought you this far. Your dreams can take you even further.
3: But when immigration questions stand between you and your future, you need more than just information. You need trusted legal guidance and a team that responds.
2: With over 100 years of combined attorney experience, Brown Immigration Law focuses exclusively on immigration law, helping professionals, families, students, entrepreneurs, and businesses navigate the U.S. immigration system.
3: And the best part? Their North Carolina immigration team is located right here in the Raleigh-Durham area, ready to serve our growing community, as well as clients across the country.
2: Need guidance with an H-1B, L-1, employment-based green card, perm process, or business immigration matter?
3: Planning to reunite your family, adjust your status, or become a U.S. citizen?
2: Clear communication, personal attention, and trusted legal advice from Brown Immigration Law.
3: Your future shouldn't have to wait. Call 919-225-3963. That's 919-225-3963.
2: Or visit brown-immigration.com.
3: Brown Immigration Law, local guidance for your immigration journey. Bigger dreams begin with Brown.

back to Radio Nara Horoscope Rapid Fire, and now it's time for all the Libras. Ji haan, Tula Rashi wale, just come in line, kyunki aapki sweet gestures aur dil ki baatein share karne ka din hai. Tula Rashi, koi pyari si baat ya meaningful conversation aapke din ko bana degi. And apne dil ki zarur suniye aur positive rahiye. Ye aapke din ke liye kafi acha note rahega. Aur main sach sach bataun, jab aap positive rehte hai na, to aapki sab cheeze waise hi bahut achhi rehti hai. और आप लोगों के लिए, चाहे वो तुला राशि के हो चाहे ना हो, मैं ये बात सबको बोल रही हूँ कि अपने दिन में ना पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है. इफ यू आर बीइंग पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि आप अपने दिन की शुरुआत भी अच्छी करते हैं और उसे एंड भी अच्छे से करते हैं. एंड ऑन दैट नोट, लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि, विच इज स्कॉर्पियो. लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना.

हाँ जी जाने मन, तो स्वागत है आपका रेडियो नैरो पे एंड दिस इज योर होस्ट अमृता एंड वी आर डिस्कसिंग होरोस्कोप्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल द स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक राशि वाले। ओवरथिंकिंग से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए बातें कह रही है। सो वृश्चिक राशि, उन सभी चीजों के लिए परेशान मत होइए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ टू ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो एक चीज को जिसको आप तवज्जो दे रहे हैं वो तो हो जाएगी, लेकिन जो पीछे छूट जाता है उसको थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ओवरथिंकिंग पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप उस पर ध्यान ना दें, ओवरथिंक ना करें। यू कैन डू मेडिटेशन या फिर आप बुक रीड कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ टू अवॉइड दीज थिंग्स। एंड इसके साथ साथ हम करेंगे काफी सारी बातें सैजिटेरियस यानी धनु राशि के भी बारे में, लेकिन आफ्टर दिस ट्रैक।

Scoop Rapid Fire पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड दिस इज योर होस्ट अमृता एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सैजिटेरियस. जी हाँ, धनु राशि वाले, क्रिएटिविटी, नए आइडियाज और एक्साइटमेंट, दिस इज गोइंग टू बी अ वाइब फॉर योर डे. एंड धनु राशि के सितारे कह रहे हैं आप अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी को खुलकर यूज करेंगे आज, और नए रास्ते भी खुल रहे हैं, बस बड़े पिक्चर पर फोकस रखने की जरूरत है. एंड इफ यू आर ड्रीमिंग बिग, जस्ट गो फॉर इट. सो इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगी कैप्रिकॉर्न्स के भी बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स.
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at

डार्लिंग ऑन रेडियो नायरा एंड दिस इज योर होस्ट अमृता. लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न्स क्योंकि हम बात कर रहे थे होरोस्कोप्स की. एंड दिस टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न्स फ्यूचर प्लानिंग और स्मार्ट मूव्स का दिन है. मकर राशि वालों के लिए आज का दिन फ्यूचर प्लानिंग के लिए काफी बेस्ट रहेगा. क्लाइंट्स के साथ डील करते वक्त आप अपने चार्म और समझदारी का भी यूज करेंगे, विच इज गोइंग टू बी सो बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. सो इफ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू मीटिंग, जस्ट गो फॉर इट. आपका दिन काफी अच्छा रहेगा. कीप योर हेड अप एंड स्टैंडर्ड हाई. ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस उससे बहुत ज्यादा बूस्ट होता है. और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट राशि यानी एक्वेरियस के बारे में, लेकिन आफ्टर दिस अपकमिंग ट्रैक.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

हाँ जी जाने मन, स्वागत है आपका रेडियो नारा होरोस्कोप रैपिड फायर में एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी अक्वेरियस। जी हाँ, कुंभ राशि वाले कंसिस्टेंट एंड एफर्ट और हार्ड वर्क, ये सारी चीजें आपके दिन का वाइब है। कुंभ राशि, लगातार की गई मेहनत रंग जरूर लाएगी। अपने डेली रूटीन को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए और प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा हाई रखिए, क्योंकि आपकी ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट है और हार्डवर्क है, ये बहुत जल्द रंग लाने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी सो गुड फॉर यू गाइज और आपकी करियर के लिए भी। और मुझे लगता है कि आपको इसके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने दिन में कोई एक प्रोडक्टिव काम, ये मैं सिर्फ कुंभ राशि वालों को नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आप सब लोगों को बोल रही हूँ, मेक योर डे अ लिटिल प्रोडक्टिव देन यस्टरडे। तो मुझे लगता है कि आपको काफी ज्यादा बदलाव भी नजर आएंगे, फिर चाहे वो एक्सरसाइज में हो, काम पे हो या घर पे हो, थोड़ा थोड़ा काम अपने दिन का जरूर बढ़ाइए और मुझे लगता है इसी के साथ आप अपने आप को बदलता हुआ भी देखेंगे। एंड ऑन दैट नोट लेट्स

Welcome back, darling, on Radio Nara Horoscope Rapid Fire, and this is your host Amrita. Let's talk about Meen Rashi, yani Zodiac series ki aakhri rashi, Pisces. खुशियों भरा दिन है और मूड भी काफी अपलिफ्ट रहेगा. मीन राशि, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे कब से, वो अब आपके पास आ रही है. अपनी क्रिएटिव आइडियाज खुलकर सबके सामने रखिए और जिस भी चीज पे आप हाथ रखेंगे आज, वो जरूर कम्प्लीटली पूरा होगा और आप इससे बहुत ज्यादा खुश होने वाले. सो ऑल द पाइसेस जस्ट हेड अप और आप मुझे बताइए कि आज आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ. रात में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम व्हिच इज RJAMRITAA. ऑफ कोर्स आप सुनना ना भूले. गपशप के साथ आपके दिन की शुरुआत कैसे होगी, ये सारी बातें बताती हूँ मैं. एंड इसी के साथ साथ अब वक्त हो गया कि मैं यहाँ से जाऊँ. आपको बाय बाय कह के मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा. मैं जाऊंगी नहीं तो अगला आएगा कैसे. जस्ट स्टे ट्यून्ड विद रेडियो नारा

0: Myra 101.9 FM, Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9. Myra mein kho jao. Pakka Desi.
2: कृपया ध्यान दें, आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जान कॉलवेल के साथ तैयार है.
3: Every Sunday 10 to 12 noon, let's fly with Geek Bazaar.

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek

0: सच है क्या सब सच
1: है। जिंदगी ये ख्वाब के है ख्वाब जिंदगी। बड़ी मजे की बात है कि ये हकीकत किसी को पता नहीं कि जिंदगी जिसमें हम जी रहे हैं ये जिंदगी है या जिंदगी वो जो हम ख्वाब में जी रहे हैं। है जिंदगी ये ख्वाब के है ख्वाब जिंदगी, जिस समत भी जाओ तो हकीकत ही लगे है। अभी तो ये लम्हा सच लग रहा है हमको, जो दो घंटे दो मिनट में गुजर जाएंगे आपकी फरमाइशों के करम से तो वो फिर आगे चलकर ख्वाब बन जाएंगे। ऐसा ही है, एक एक मिनट हकीकत से ख्वाब में चलता रहता है और फिर क्या होता है इसके बाद के फिर याद आता है वो ज़माना गुजरा हुआ। जैसे कि अब ये फरमाइशें हैं एक से एक लाजवाब, बिल्कुल खूबसूरत ख्वाब की तरह। जो पहली फरमाइश आपने समाप्त फरमाई चरणजीत लालियन कंचन लाल जी की थी, या दूसरी फरमाइश ऑफ कोर्स ज्योति करीर की होगी नवरात्रि के मौके पर। नवरात्रि शायद आज ही तो शुरू हो रही है मुझे लगता है। वी आर योर होस्ट अफरोज़ जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी, 10 से 12 हम सुबह, 10 से 12 हम शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
2: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
3: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
1: Ae maa tere dam se hi hain duniya ki taakatein. समाप्त फरमाइए ज्योति करीर जी ने जो ये नगमा भेजा है खास कर नवरात्रि के मौके पर। तो समाप्त फरमाइए मेरा शेर, ऐ माँ तेरे दम से ही हैं दुनिया की ताकतें, सब शेर तेरे सामने नौकर बने हुए। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

माँ तेरे हाथ थाम के गिर गिर के चले हैं। अरे माँ तेरे हाथ थाम के गिर गिर के चले हैं, क्या देवता क्या औलिया सब तेरे पले हैं। आनंद बख्शी का कलाम, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मौसीकी। आशा फिल्म का नाम था, 1980 की फिल्म थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। इसमें मोहम्मद रफ़ी एंड चंचल की आवाज़ें थीं, दोनों ही बुलंद आवाज़ें, क्या बात है। ज्योति करीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये फरमाइश नवरात्रि के मौके पर भेजी। सबको नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो। और अब लीला तेजानी की जानिब से, जमैका से, न्यूयॉर्क से एक फरमाइश आई है नूर जहाँ की, क्या बात है। और उसके साथ ये दर्द भरा शेर भी सुन लीजिए, जो हकीकत है इसमें, इसमें कोई शक नहीं, ये कुदरत है। उसने चुना है चांद जो करता है अनसुनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चकोरी जो है उसको उर्दू में कुमरी भी कहते हैं, कमर की वजह से। उसने चुना है चांद जो करता है अनसुनी, कुमरी ने भला ऐसी मोहब्बत ही क्यों चुनी।

0: भीगे हुए बालों से कतरे टपक रहे हैं। आपको तो सीन याद होगा, चलती का नाम गाड़ी, फिल्म का नाम था ये भीगे हुए बालों से कतरे टपक रहे हैं और सीखे न जो धड़कना वो दिल धड़क रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम, एस डी बर्मन की मौसिकी, चलती का नाम गाड़ी, 1958 की ये फिल्म थी। किशोर कुमार की आवाज़ में नवाब का समा तमाया। मोहतरमा कंचन लाल जी, मोहतरम चरणजीत लाल जी की फरमाइश पर, समृद्धि ठाकुर साहिबा आपकी फरमाइश सराखों पर, और इतना अच्छा माहौल है, लेकिन हमें ये भी कहना पड़ता है कि खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, और जहाँ बजती हैं शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। देखिए आप, समृद्धि ठाकुर साहिबा ने अपनी अमृता काकी के निधन पर ये नगमा भेजा है जो उनका पसंद का था।
1: और अफरोज भाई समृद्धि जी लिखती हैं कि आई विल ऑलवेज चेरिश हर मेमोरीज, स्पेशली हर फेथ इन गॉड, हर लव फॉर लाइफ एंड हर जेनरोसिटी टुवर्ड्स मी। ये समृद्धि ठाकुर लिखती हैं अपनी अमिता काकी की याद में। उनका न्यू जर्सी में देहांत हो गया था जस्ट ऑन अक्टूबर 4th, सो प्लीज एक्सेप्ट आवर कंडोलेंसेस समृद्धि जी, एंड वी आर हैप्पी टू प्ले दिस सॉन्ग इन मेमोरी ऑफ योर आंटी।
0: हम तो दुआ करते हैं कि सारे हमारे लिसनर्स हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा के लिए हयात रहें, जब हम जाएं तो उसके बाद देखेंगे। हम चले जाएंगे पर जिंदगी रह जाएगी, अरे हम चले जाएंगे पर जिंदगी रह जाएगी, जो कि दिल में दोस्तों के याद सी रह जाएगी।

0: कहता न था चलती नहीं तकदीर के आगे, अरे कहता न था चलती नहीं तकदीर के आगे, और फिर आज रोते हो मेरी तस्वीर के आगे। तनवीर नकवी का कलाम था, एस मोहिंदर की मौसीकी, शीरिन फरहाद फिल्म का नाम था, जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, 1956 की फिल्म थी। लता मंगेशकर, बहुत बहुत शुक्रिया। समृद्धि ठाकुर साहिबा।
1: एंड फिरोज जी, सेवरल लिसनर्स हैव रिसेंटली आस्क्ड इफ दे कैन सबमिट रिक्वेस्ट एंड हाउ टू सबमिट रिक्वेस्ट टू गीत बाजार। सो the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your

0: DOMAL Voice Lessons. And the NC Dashera Festival, the Ram Leela and the Ravan Dahan will all be taking place on October 24th, 2026. And that will be great. There are garam garam jalebiyan and all kinds of snacks. And then the show, which features episodes from the story of the Ramayana, from Ramji's childhood all the way to the victory in Lanka. You can catch it all at HSNC 309 Aviation Parkway in Morrisville, North Carolina. The Mela starts at 4 p.m., the Ram Leela starts at 5:30 p.m., and the Ravan Dahan will be approximately 8:30 p.m. So come on down and check it out. For more information, you can contact Saroj Sharmaji at 919-656-5224 or Sushma Maheshwari Ji at 919-880-8529.
1: आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर, जिस तरह से के पूर्णिमा गुप्ता की परीक्षा सर आंखों पर। इस वक्त वो भारतवर्ष में है, यानी हिंदुस्तान में, यानी कि इंडिया में, यानी कि बहुत से नाम हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पर मौजूद हैं और वहीं से हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं और वहीं से उन्होंने ये आवाज़ भेजी। वो अपनी आवाज़ में ही अपनी फरमाइश करती हैं और हमारा इम्तिहान लेती हैं और कहती हैं कि बताओ ये कौन से गाने की लाइन है। अभी तक तो हम समझते हैं कि उनकी हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं, यानी कि हर परीक्षा उनकी ठीक से हम पेश कर रहे हैं। देखते हैं इस बार की परीक्षा। सुनिए मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा की आवाज हिंदुस्तान से।
2: चौरंगी में।
1: वाह क्या बात है। एक बार और जरा अपनी आवाज सुनाइए तो ताकि मैं हिसाब लगा सकूं कि कौन सा नगमा है।
2: चौरंगी में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, फिल्म का नाम तो पता लग गया हमें। ये देखिए आप और हम आपको एक शेर सुना दें और देखें आपके ख्याल से हम कहाँ तक आपकी परीक्षा के करीब पहुँचे। ये लीजिए। चली जो मनाने को एक वो दीवानी, अरे चली जो मनाने को एक वो दीवानी, हुआ घुटनों घुटनों ये अश्कों का पानी।

तेरी अदा गेसु तेरे चेहरा परी कहें। जरा समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन नया अंदाज है। तेरी अदा गेसु तेरे चेहरा परी कहें, ये सब कहें पर हम तेरी जादूगरी कहें। खातिन हजरात, केदार शर्मा का कलाम था, पंकज मलिक की मौसीकी, ऑफ कोर्स 1940 का ये नगमा था, 1940 का फिल्म का नाम था जिंदगी, और के एल सैगल की आवाज़ थी। आपको अंदाज हो रहा होगा मैं कौन से नगमे को गाने जा रहा था, लेकिन उससे शायद आप कंफ्यूज हो जाते। मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी ने मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश पर एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से आपने नगमा समाप्त फरमाया। आप ड्रम से मोहतरमा सीमा फारूकी साहिबा की फरमाइश। मालिक मेरी ये इल्तजा अब तू कबूल कर, अरे मालिक मेरी ये इल्तजा अब तू कबूल कर, सबसे हसीन हैं हम न कहें फूल फूल कर।

बंदे वही जिनके अजब धंधे हुए, बंदे वही जिनके अजब धंधे हुए, और आज के अखबार सब गंदे हुए। भरत व्यास का कलाम मौसीकी थी वसंत देसाई की। क्या बात है, बहुत दिन के बाद इनकी मौसीकी को सुनने का मौका मिला। दो आंखें बारह हाथ, ये फिल्म का नाम भी है 1957 में, और साथ साथ ये सीमा फारूकी का अंदाज भी है। इतनी मेहनत करती हैं, इतने काम करती हैं कि दो आंखें बारह हाथ। गुलूकारा इसकी हैं लता मंगेशकर। मोहतरमा सीमा फारूकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हर फरमाइश सनाकों पर। जैसे कि फरहत नकवी ने एक नगमा भेजा है, बड़े प्यारे नए अंदाज में, बड़ा भोला और इनोसेंट नगमा है सत्येंद्र सरताज की आवाज़ में। तो हम फरहत नकवी जो कनाडा में टोरंटो में हैं उनको डेडिकेट करते हैं उनकी गुजारिश पर। तुझको मिले या ना मिले ख्वाहिश ज़रूर कर, सुनते रहिएगा। कि तुझको मिले या ना मिले ख्वाहिश ज़रूर कर, एक बूंद की बारिश की गुजारिश ज़रूर कर। यू आर लिसनिंग टू गीत।

0: निशानी देख ओ जानी मुझे शर्मिंदा ना कीजो। अरे निशानी देख ओ जानी मुझे शर्मिंदा ना कीजो। कहानी मर भी जाए तो उसे फिर जिंदा ना कीजो। आनंद बख्शी का कलाम मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मेरा गांव मेरा देश 1971 की ये फिल्म है। We are your host of Rostad, John Corwell and Ravi Chirukudi.
1: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
2: You're listening to WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 14.

ये बेचारा दिल बड़ा खामोश है, अरे ये बेचारा दिल बड़ा खामोश है, हाय फिर से दिल का दिल रूपोश है।

वफादारियां सभी आसान होती। अरे वफादारियां सभी आसान होती, हसीनाएं अगर न बेईमान होती।

जफाएं मिलें या वफाएं मिलें, मगर हम जिए जा रहे हैं। जफाएं मिलें या वफाएं मिलें, हम जिए जा रहे हैं। और जहर में दवा या दवा में जहर, हम पिए जा रहे हैं।

बेकैफ जिंदगी है सरकारे मदीना, बेकैफ जिंदगी है सरकारे मदीना, दिल को तेरी कमी है सरकारे मदीना।

0: बेकरारी काश ना जाती जो वो आती नहीं। समझ फरमाइएगा, जरा सा मुश्किल भी हो सकता है। बेकरारी काश ना जाती जो वो आती नहीं, जब करार आया तो हाय बेकरारी बढ़ गई।
1: यू आर लिसनिंग टू गी।

वो बेवफा बना जो वफा गैर से करे। ये सच बात है कि इंसान उसके लिए बेवफा हो जाता है जिसके साथ वफादारी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है देखिए, वो बेवफा बना जो वफा गैर से करे, अगर वो ही वफादार है तो बेवफा है कौन।

तेरे साथ मेरा नाम जुड़ा है। समझ फरमाए, छोटा सा शेर है, तेरे साथ मेरा नाम जुड़ा है यानी मैं बेनाम हुआ हूँ। यू आर लिसनिंग टू गीत बाज़ार।

0: खुश होते मुझे देखकर जलते हैं क्यों सभी खुश होते मुझे देखकर जलते हैं क्यों सभी, और शादी नहीं हमारी किसी और की सही।
1: यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

किसके वो इंतजार में बरसों से खड़ी है, अरे किसके वो इंतजार में बरसों से खड़ी है, आंसू बरस रहे हैं या सावन की झड़ी है। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

की देखें छोटा सा शेर अच्छा लगेगा कि सुन दिल के खामोश इशारे, अरे सुन दिल के खामोश इशारे, दिल का भी तो दिल है प्यारे।

0: से, और कोई जाके समझा दे बेवकूफ लड़की से, कोई जाके समझा दे। और क्यों मुझे वो लिखती है मेरे मन के शहजादे।
1: You are listening to Geet Bazaar.

यूरमतियाज हैज फुल फेथ ऑन रणवीर सिंह. कहते हैं रणवीर कैन डू एनीथिंग एज एन एक्टर. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रीक्वेंसी नायरा. एंड इम्तियाज अली हैज शेयर्ड हिज थॉट ऑन रणबीर कपूर प्लेइंग लॉर्ड राम एंड नीतीश तिवारी रामायण, प्रेजिंग द एक्टर्स एबिलिटी टू कम्प्लीटली इमर्स हिमसेल्फ इन एवरी रोल. स्पीकिंग अबाउट रणबीर कास्टिंग, इम्तियाज सेड रणबीर कैन डू एनीथिंग एज एन एक्टर. ही शुड डू डिफरेंट रोल्स एंड व्हेन ही डज डिफरेंट रोल्स ही विल बिकम देम. ही इज अ प्योर एक्टर एंड आई होप ही डज ऑल काइंड ऑफ रोल्स. आई एम वेरी हैप्पी टू ही इज डूइंग लॉर्ड राम्स रोल बिकॉज ही कैन ब्रिंग अ सर्टन effect or reality to the character. It will be nice to approach Lord Ram's character in a human and personal way. The filmmaker also believes the role will have a lasting impact on Ranveer's personality and said it will be a hugely beneficial for Ranveer to have played Ram because he is the kind of actor who imbibes from the character and he will take from Ram and that will be so enriching for him. Actually, if he trades the same qualities that Ram has, kuch thoda sa bhi 1-2% zindagi badal jaegi yaar.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: अच्छा सुनो, यू आर कमिंग फॉर तानिष्क्स रैले ट्रंक शो ना?
2: कब?
1: अरे आई टोल्ड यू लास्ट वीक, इट्स ऑन अक्टूबर 17th एंड 18th एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट रैले कैरी, 1008 पार्क साइड मेन स्ट्रीट, कैरी नॉर्थ कैरोलाइना 27519, फ्रॉम 11 AM टू 7:30 PM. We had planned to get dinner also after.
2: Oh, I've already scheduled a flight meeting on the 17th.
1: Theek hai, Sunday then. What better way to spend the weekend than shopping for diamonds? Tanishq, a Tata product.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 49 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में? क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, नवरात्रि का आज पहला दिन है। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। नवरात्रि के फेस्टिवल में जो वाइब रहती है वो अलग ही लेवल की पॉजिटिव वाइब रहती है। एंड चाहे गरबा हो या फिर माता रानी की पूजा हो, इट्स लाइक शब्दों में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता हूँ मैं। तो आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है एंड नवरात्रि का आज का ये पहला दिन है। तो रेडियो नायरा सबको विश करता है हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि में आप अच्छे से एंजॉय कीजिए एंड खुद की केयर भी कीजिए एंड और बस सुनते रहिए रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। सुनाने जा रहा हूँ इस शाम का आपको पहला गाना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, नवरात्रि का आज पहला दिन है। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। नवरात्रि के
1: उतनी का भगने न पाए, उतनी का भगने न पाए। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल।
2: ओ फोन लगा के बाबी

0: तो बताओ जाना किधर है?
1: सुन, मायने के सीधा जाके दाएं पुरु दाएं के सीधा जाके दाएं, मायने के सीधा जाके दाएं पुरु दाएं के सीधा जाके दाएं, फिर थोड़ा आगे मायने के दाएं के सीधा जाके दाएं के दाएं।
0: हैं? कुछ समझ में नहीं आया।
1: फिर से सुन, मायने के सीधा जाके दाएं पुरु दाएं के सीधा जाके दाएं, फिर थोड़ा आगे मायने के दाएं के सीधा जाके दाएं के दाएं के दाएं।
0: घूम के वापस उधर ही आ गए।

वेलकम बैक, एंजॉय किया आपने गाना। गाना तो वाकई में काफी बेहतरीन जिसने सेट कर रखी है इस शाम की वाइब। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है कि लोकल खबरों में के बारे में कुछ जान देने का। तो पहली खबर है कि हेलमेट पहनिए और डांस टीम में शामिल हो जाइए। जी क्या है खबर बताता हूँ आपको। शुरुआत करते हैं एक प्रेरणादायक खबर से। हमारे ट्रायंगल की रहने वाली एम्बर रूपिंटा ने साबित कर दिया है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने वॉशिंगटन विजार्ड्स की विजडम डांस टीम में अपनी जगह बना ली है। मज़ेदार बात यह है कि एम्बर ने इस डांस टीम में शामिल होने का सपना अपनी उम्र के 20 साल में देखा था, जिसे उन्होंने अब एक शानदार सेकंड एक्ट के रूप में पूरा किया है। क्यों है ना कमाल की बात, मतलब यही है, सपने देखिए यार। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।

गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिवना नाइट्स, एंड अगली खबर है फुटबॉल प्रेमियों के लिए। फुटबॉल ग्राउंड से बड़ी खबर आ रही है, जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। खेल के मैदान से हमारे टार हिल्स के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। UNC फुटबॉल टीम ने बिल बेलिचिक के मार्गदर्शन में अपनी पहली रैंक वाली जीत दर्ज की है। उन्होंने पीटर्सबर्ग और उनके ही घर को उनके घर में ही मात देकर एक ज़बरदस्त जीत हासिल की है। इस जीत के बाद पूरे चैपल हिल और डरम के फैंस जो है वो जश्न मना रहे हैं। एक बार रेडियो नायरा भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता है विजेता टीम को। सुनाने जा रहा हूँ इस खुशी के मौके पर आपको अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड राहत की खबर एक आपको देने जा रहा हूँ। थोड़ा रुकिए, बताता हूँ तो राहत

की खबर यह है कि गैस की कीमतों में बड़ी छूट। जी हाँ, अगर आप आज लॉन्ग ड्राइव पर निकलने वाले हैं या अपनी कार की टंकी फुल कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ट्रायंगल के एक लोकल गैस स्टेशन ने प्रति गैलन 20 सेंट की बड़ी छूट का ऑफर जो है वो निकाला है। वीकेंड पर इस महा ऑफर का आपने लाभ उठाना चाहिए। लोकल ड्राइवरों के चेहरे पर तो हंसी जो है वो आ रही है, आते ही जा रही है एंड राहत देते जा रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर, मतलब नाइट सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारापुर निर्वाणा नाइट्स एंड अगली खबर है कि बहुत शानदार खबर है, म्यूजिक और बॉक्सयार्ड आरटीपी में धमाल। यस, आने वाले हफ्ते को मजेदार बनाने के लिए बॉक्सयार्ड आरटीपी में मंगलवार दैट इज 13 अक्टूबर को म्यूजिक बिंगो नाइट का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं तो हैमर ट्रिविया के साथ शुरू के इस खेल का मजा लेने जरूर पहुंचिए। मतलब ये इतना अच्छा होने वाला है कि आपको वाकई में यहाँ जाकर ऐसा लगेगा वर्थ इट था यार, अच्छा हो गया आगे। ये टाइप का इवेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। एंड कैसे चल रही है आज की आपकी इवनिंग, इस इवनिंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए पेश करने जा रहा हूँ अगला गाना, बस आप ही के लिए। That's right. Pump it up.